0: 29 सितंबर है और दुनिया कौन सा दिन मना रही है, समझना आपके दिल के साथ इसका ताल्लुक है, दिल का दिन है। वो भी होगा आगे कुछ आपको देंगे खास। प्यार अली भाटिया कहते हैं इन ऑर्डर टू सक्सीड यू मस्ट फेल, कहते हैं कामयाबी के लिए आपको पहले नाकाम होना पड़ेगा, सो दैट यू नो व्हाट टू डू नेक्स्ट टाइम, ताकि आपको चल पता चले आगे करना क्या है। ओके
1: रविन जी, महफिल में जल उठी है समा, ये गाना फिल्म निराला का है, 1950 की मूवी है, जिसको लता मंगेशकर ने गाया है, उस जिसकी धुन श्री रामचंद्र ने बनाई है, ये गाना मधुबाला पे फिल्माया गया है और उसके साथ देवानंद ये मूवी में काम कर रहे थे। ब्यूटीफुल गाना सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: मुझे पता था आपका दिल खुश हो जाएगा। कई एक हैं हमारे यहाँ पर जिनका खुश चिराग। थैंक यू। रूपल कहती हैं कि चला जाता हूँ किसी की धुन में। ओके, देखती हूँ, वो भी शामिल करती हूँ। और बेमिसाल अंदाज की शुरुआत है, हो गई है बहुत अच्छा गाना शबीर अहमद। क्या बात है। अजरा करीम ने भी सुना है।
2: अस्सलाम वालेकुम प्रवीण जी, आज की महफिल अच्छी होगी इंशाल्लाह। कैसी है आप? एक गाना सुनना है, तेरे प्यार में दिलदार जो है मेरा हालदार, कोई देखे या ना देखे अल्लाह देख रहा है, डियर प्लीज। थैंक यू सो मच, अजरा करीम फ्रॉम मुंबासा।
0: अल्लाह देख रहा है, कई बार हमें अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि वो देख रहा है, वरना हम भूल जाते हैं। पर अजरा करीम देखती हूँ। सना काना ने आप सबको विश किया है, और ऑस्ट्रेलिया से एज यूजल आज के दिन सोनल भी करती हैं, मतलब सुबह सुबह बेमिसाल में। बहुत अच्छे सोनल, थैंक यू सो मच। कल समय दो एक मैसेज आया जो ज़रा लेट देखा मैंने।
3: हेलो सलाम परवीन जी, मिर्ज़ा गाली साहब कहते हैं एक जनाजे की खातिर सारा जहां निकला, एक जनाजे की खातिर सारा जहां निकला, एक वो ना निकला जिसके खातिर जनाजा निकला। परवीन शाकिरा जी कहती है इसके जवाब में, ऐ सनम मैं कैसे आती तेरे जनाजे के पीछे, ऐ सनम मैं कैसे आती तेरे जनाजे के पीछे, मेरा अपना ही जनाजा था तेरे जनाजे के पीछे। हमने तो कही थी गली छोड़ने की, तुम तो दुनिया ही छोड़ चले गाली साहब। बहुत बहुत शुक्रिया परवीन जी, मुलाकात होगी कल, धन्यवाद। हेलो सलाम परवीन जी, कल मैं थानू जड़ी वो शायरी कर ली सी, वो ना
0: बहुत अच्छी शायरी थी, ये इन्होंने कल भेजा था, आज भी पैगाम भेजा है कि मे बी, पर आप दूसरी शायरी आप कर लें अजय पाल, वो तो बहुत ब्यूटीफुल थी। परवीन शाकिर का भी आपने शेर सुनाया है समीन, वो पाकिस्तानी पोएट थी, पोएटस, और इनकी बहुत कम उम्र में, सारी उम्र में मौत हो गई थी एक हादसे में, पर सारी उम्र जो भी लिखा है वो बस एक प्यार जो नाकाम रहा, और किस तरह से वो उनके पीछे बस सारी उम्र रही हैं उनकी प्रेजेंस को लेकर, लेकिन उन्होंने ख़ास इनके साथ वफा नहीं की, बस सारी पोइट्री यही है और कुछ नहीं। मे बी ठीक किया नहीं किया। रंजन विनोद फ्रॉम लंदन, माय फेवरेट सॉन्ग, महफिल में जल उठी शमा। जी मुझे पता ही था एक और शमा भी जल रही है।

0: क्या बात है, अल्लाह देख रहा है। अब देखते हैं।
1: सलाम और आदाब शहजादी साहिब और सबको। शहजादी साहिब, ये आज जो आप गाने लगा रहे, व्हाट अ स्टार्ट, ब्यूटीफुल स्टार्ट, ऑनेस्टली मजा आ रहा है। और जितने ये शमा के गाने हैं ना, हमारी भाभी शमा को, सलीम महर की मिसिस को, ये सब डेडिकेट कर दें तो मजा आ जाए। थैंक यू सो मच, लव द प्रोग्राम।
0: वाकई शमा को, चलिए तीन चार गाने थे वो उनको डेडिकेट करते हैं, सलीम महर की जो अहलिया है। बहुत अच्छे। शबीर अहमद फ्रॉम लंदन और प्यार अली।
2: रवीन जी, शमा से कोई कह दे कि रहते रहते अंधेरा हो रहा है। ये गाना फिल्म जय भवानी का है, 1961 की मूवी है, जिसको मुकेश और सुमन कन्यापुर ने गाया है और जिसको लिखा है गोपाल सिंह नेपाल ने लिखा है और जिसकी धुन एस मोहिंद्रा ने बनाई है। ये ब्यूटीफुल गाना मुकेश का और सुमन कन्यापुर का सुनाकर अपने दिल खुश कर दिया।
0: और 27 सितंबर है, समय आज वर्ल्ड हार्ट डे है 2026 का, डोंट मिस अ बीट, ये है इनका स्लोगन आज वर्ल्ड हार्ट डे। सीने में समय दर्द हो जरूरी नहीं है दिल के दौरे के लिए या वैसे दिल की बीमारी के लिए, सीने में दर्द जरूरी नहीं है, कुछ और भी चीज़ें हैं सामने जो देखनी पड़ेंगी आपको कि ये हो तो नहीं रही, क्योंकि आजकल आपने देखा है बहुत जवान तबके में दिल के दौरे पड़ रहे हैं। तो कहते हैं कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी अलामतें हैं जिन पर आपकी नज़र होनी चाहिए। नंबर वन, अगर अचानक आपको सांस लेने में थोड़ी तकलीफ़ हो रही है, थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है सांस लेने में और पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है, तो बी वेयर। नंबर दो, अचानक आप थक रहे हैं, ज़्यादा ही थक रहे हैं, पहले यही काम आप बड़ी फुर्ती से करते थे, आजकल ज़रा थकावट हो रही है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नंबर तीन, कहते हैं अचानक पसीना आ जाए, कोई दर्द नहीं है, कुछ नहीं है, पसीना गैर मामूली, कभी पहले हुआ नहीं, ये हो गया नंबर तीन पसीना। नंबर चार, आपको वर्जिश करने में आजकल दिक्कत हो रही है, पहले आधा घंटा कर लेते थे, आजकल 15 मिनट के बाद आप थक रहे हैं, वर्जिश में आपकी कमी हो रही है। तो समिन ये चीज़ें, चारों चीज़ें आपके साथ बांटी हैं एक मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया है लोगों को, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। आप देखते हैं उमर फ्रॉम दुबई। गुड मॉर्निंग टू योर ब्यूटीफुल लिसनर्स और शमा के गाने, चलिए उमर के लिए और शमा के लिए आज के गाने पहले जो हैं, चंद्रिका वासंत गोसाई एंजॉइंग द सॉन्ग्स, ऑफ कोर्स आई न्यू इट, और सलीम मेहर, परवीन जी शमा इज वेरी हैप्पी क्योंकि शमा को आपने एक नहीं दो नहीं तीन तीन चार चार गाने दे दिए। ओके ग्रेट शमा, आपने एंजॉय किया है, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। अब चलते हैं, दो फरमाइशें आई थी, एक तो कर दी, दूसरी

0: और दिमाग पर आ गया है सबसे पहले जो है वो आया है मैसेज उमर का फ्रॉम दुबई. गुड टू हियर फ्रॉम यू उमर. दिमाग की बत्ती जलाओ और दिमाग मत चाटो. ओके दीज वर द टू. अब अमीना, अमीना की बात सुनते हैं.
1: अना का बोझ कभी जिस्म से उतार के देख, अना का बोझ कभी जिस्म से उतार के देख, मुझे जुबान से नहीं रूह से पुकार के देख, मुझे जुबान से नहीं रूह से पुकार के देख, मेरी जमीन पे चल तेज तेज कदमों से, फिर उसके बाद तू जलवे मेरे गुबार के देख, ये अश्क दिल पे गिरे तो बहुत चमकता है, ये अश्क दिल पे गिरे तो बहुत चमकता है, कभी ये आईना तेजाब से निखार के देख, ना पूछ मुझसे तेरे कुरुप का नशा क्या है, ना पूछ मुझसे तेरे कुरुप का नशा क्या है, तू अपनी आंख में डोरे मेरे खुमार के देख, जरा तुझे भी तो एहसास हिजर हो जाना, बस एक रात मेरे हाल में गुजार के देख, अभी तो सिर्फ कमाल गुरूर देखा है, अभी तो सिर्फ कमाल गुरूर देखा है, तुझे कसम है तमाशे भी इंतजार के देख, अना का बोझ कभी जिस्म से उतार के देख, मुझे जुबान से नहीं रूह से पुकार के देख. थैंक यू परवीन जी. अमीना फ्रॉम मैनचेस्टर.
0: बात है अमीना फ्रॉम मैनचेस्टर. मुझे जुबान से नहीं रूह से पुकार के देख. बहुत खूब, थैंक यू. अब चलते हैं. चिराग पटेल कहते हैं कि टॉक पोलाइटली, दे कुड हैव टॉक टू द पंडित पोलाइटली और विजिटेड और कॉन्टेक्टेड द पंडित द टेम्पल मैनेजमेंट to explain how the noise affects sleep, health or whatever. You can also check noise laws, like file a police complaint or contact the, जैसे यहाँ पर नेमा को contact करते हैं. चिराग ने भी भेजे हैं वो जो मुहावरे, लेकिन पहले हम चलते हैं. रितु.
2: परवीन जी नमस्कार. जो आपने पूछा है ना, तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है प्रवीण जी. पहले तो प्यार से कहना चाहिए कि थोड़ी आवाज कम कर दो, क्योंकि आसपास के लोग भी परेशान हो रहे हैं. दूसरा, रात को बच्चों और बुजुर्गों को भी तो आपको पता है ना कितनी परेशानी होती है, बच्चों को सुबह स्कूल जाना, बुजुर्गों को भी आराम चाहिए. और ठीक है म्यूजिक सुनना अच्छा होता है, लेकिन दूसरों की शांति और सुविधा का भी तो ध्यान रखना चाहिए. और आपको तो जो काम गुस्से से नहीं हल हो सकता, वो थोड़ा बहुत सभ्यता से प्यार से हल करना चाहिए. तो कई लोग तो इतने स्टबन होते हैं, वो फिर भी वो और ऊंची आवाज कर देंगे. लेकिन मेरे ख्याल से दूसरों की भी ना सुविधा का ना ध्यान रख के ही म्यूजिक लाउड करना चाहिए. अपने अपने विचार हैं.

0: रितु गुप्ता
1: बिल्कुल ठीक कि लोगों का दूसरों का भी तो ध्यान रखा जाए, तो इसके लिए ये आप नहीं कह सकते कि लोग ध्यान रखेंगे, नहीं, इसके लिए कानून बना है ना, ध्यान रखने के लिए कानून का डंडा चलेगा तो हो जाएगा काम। लेकिन जैसे आपने कहा कि प्यार से कहें वो नहीं होगा।
2: It's 11:19
3: रोज साढ़े नाल जुड़ो गुरबानी प्रोग्राम अते गुरमुख विचारां वास्ते सवेरे 6 बजे तो लैके 7 बजे तक। Start your day with peace and devotion. The East African Ramgadia Board brings to you religious prayers. Tune in and be a part of this divine journey every morning from 6 a.m. to 7 a.m. on East FM. Brought to you by the East African Ramgadia Board.

मोहम्मद रफी का बेहतरीन नगमा। अब देखते हैं, शनाज बट फ्रॉम तंजानिया कहते हैं दिमाग से काम लेना, लेकिन दिमाग से काम लेना तो एक्चुअली काम लेना है, दिमाग का ये मुहावरा ना हुआ। लेकिन अगर आपने कहा दिमाग खाना, हालांकि वो भी पका कर खाते हैं बकरी का दिमाग, पर दिमाग खाना ओके, मे बी इट इज़ एक्सेप्टेबल। सना काना दिमाग फेर देना, ओके, दिमाग सातवें आसमान पर होना। अब ये मुहावरा है, दिमाग सातवें आसमान पर वैसे तो जा नहीं सकता, ये एक्चुअल नहीं है, ये दूसरा मीनिंग है, सो मुहावरा हो गया। सना, वेल डन। बिंदु, आपने कहा है जयपुर से, सभी को नमस्कार। और दिमाग ठिकाने ना होना, इसका दिमाग ठिकाने नहीं है, मतलब के पागल है, और ये भी मुहावरा, ग्रेट। खाली दिमाग शैतान का घर, जी सोनल मोदा। दिमाग दौड़ाना, ओके। उमर फ्रॉम दुबई, अच्छा, दिमाग पर कहते हैं कि, चिराग पटेल कहते हैं कि दिमाग खाना इज़ टू पेस्टर समबडी, जी बिल्कुल। और अनोय करकना पर, दिमाग चलना टू थिंक शार्पली, दिमाग ठिकाने होना टू कम आउट टू वन सेंसेस फेस रियलिटी, दिमाग ठिकाने लग जाना, अब उसको जो हकीकत है पता चल गई है, ही कैन फेस रियलिटी। दिमाग चटपटाना, ओके, टू बी टू एक्ट क्रेजी। दिमाग का दही करना, टू कम्प्लीटली कन्फ्यूज, दिमाग का दही करना, किसी को बौखलाहट में डाल देना, चिराग। थैंक यू प्यार अली भाटिया, आपने सबको ग्रीट किया है। सोनल मोदा, दिमाग फिर जाना, हाँ ये भी है, फिर जाना, दिमाग इसका फिर गया है।

0: अच्छा अश्विन,
1: yes.
0: क्या यादगार है ये एवरग्रीन नंबर है और शमशाद बेगम.
1: ये शमशाद बेगम मिला. यस, गीत पूरा हो गया कि क्या?
0: जी जी, ये हो गया.
1: मुझे सुना है, अभी सुनाई देता है कि अभी बज रहे है.
0: अच्छा, आपको ऐसे ओके, वो जरा डिले हो सकता है लेकिन लेकिन खत्म हो गया. जी
1: खत्म हो गया जी. अच्छा, तो ये आपने बोला शबाब हिट फिल्म हुई थी परम जी. यस, भारत भूषण और नूतन की अदाकारी थी.
0: अच्छा, भारत भूषण के साथ. टैलेंट वाइज तो बहुत ही बैलेंस करते थे दोनों.
1: यस, दोनों ऑफ कोर्स. और ये दिस वाज इमीडिएटली आफ्टर बैजू बावरा, सेम पैटर्न में बनाई थी. लेकिन बैजू बावरा जैसी जितनी कामयाब हुई इतनी नहीं हुई, फिर भी इट बिकेम पॉपुलर एंड हिट बन गई. क्योंकि जैसे आपने बोला कि भारत भूषण और नूतन की अदाकारी और नौशाद अली और शकील बदायूं की टीम थी म्यूजिक और क्या चाहिए.
0: बिल्कुल.
1: तो फिल्म सक्सेसफुल हुई थी परी जी.
0: जी जी.
1: और गाने सभी और लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने गाया. शमशाद बेगम ने एक ही गाना गाया था.
0: अच्छा.
1: लेकिन दूसरे सभी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने गाए. मोहम्मद रफी के भी गाने बहुत लोगों ने पसंद किया था.
0: तो ये वो जमाना था जब शमशाद बेगम को आहिस्ता आहिस्ता धक्के मार रहे.
1: ट्रेजेडी बन गई. 40s में शी वाज देन यू नो थिंक पॉलिटिक्स सभी कभी होता है ना.
0: राइट.
1: गीता दत्त वाज थ्रोन आउट ऑल यू नो ऐसा होता है.
0: सुमन कल्याणपुर एंड ऑल द अदर्स.
1: या Only Mangeshkar sisters.
0: और मंगेशकर सिस्टर्स में भी दो और भी थी ना, के एक ही और थी, उनको भी नहीं चांस दिया. एक उषा थी.
1: ये उषा और मीना.
0: मीना, हाँ, दो और.
1: हाँ, लेकिन आई थिंक उषा और मीना मराठी फिल्म में क्वाइट पॉपुलर थी. पर
0: ओके, बस उन्होंने फिर मराठी का रुख
1: किया. लेकिन उनको उनकी मोनोपोली चली 50 साल
0: चली.
1: अनफॉर्चुनेटली वी डिडंट हैव मच चॉइस.
0: यस, दैट टाइम.
1: तो या तो ये सब हुआ.
0: थैंक यू अश्विन.
1: थैंक यू प्रवीण जी.
0: और सवन, अब चलते हैं, थोड़ी बातें करते हैं, अपने लिसनर्स से भी पूछते हैं क्या कह रही हैं.
2: प्रवीण जी, नवरू मगज એટલે દિમાગ શેતાનનું કારખાનું છે. 2-3 મિનિટ નવરૂ રી એટલે કઈ ને કઈ વિચાર અંદર આવે. થેન્ક યુ વેરી મચ ચંદ્રિકા વસંત ગોસાઈ.
0: અચ્છા, બહુત અચ્છે. और इनके साथ ही चंद्रिका वसंत गोसाई के साथ आते हैं यासर. यासर कहते हैं, आज तारीख में 2010 India's unique ID system, Aadhaar card scheme was officially launched. जी हाँ सामने, ये जो official scheme थी ये आज launch की थी Prime Minister Manmohan Singh ने और Sonia Gandhi, Nandarbar district of Maharashtra में ये हुआ. पहला Aadhaar card was given to Ranjana Sonawa ने. लेकिन 2010 में ये काम शुरू हुआ था कि आधार कार्ड दिए गए थे अवाम को, उनका एक तरह से पहचान पत्र था. 1959 आरती साहा, आई हैड नेवर हर्ड ऑफ दिस, आरती साहा बिकेम द फर्स्ट एशियन एंड इंडियन वुमन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल. क्या बात है आरती साहा की. ये 1959 में हुआ कि पहली एशियाई और पहली भारतीय औरत ने इंग्लिश चैनल तैर करके पार किया. 1932 महमूद अली वाज बोर्न, द लेजेंडरी इंडियन एक्टर एंड आइकॉनिक कॉमेडी किंग ऑफ बॉलीवुड. ही वाज बोर्न इन मुंबई. ही गेव टाइमलेस परफॉर्मेंसेस इन क्लासिक्स लाइक पड़ोसन, बॉम्बे टू गोवा एंड कुंवारा बाप.

0: आपने सुरैया जी को इस तरह से एक बाल भानो और सुरैया जी को एक के बाद एक सुनाकर आपने बड़ा उपकार किया है। बहुत मजा आ रहा है, मेरा तो हफ्ता बन गया। शुक्रिया बहुत बहुत। और परवीन जी, जो पुजारी जी का पूछा है ना आपने, उसके लिए तो शॉर्ट में यही कहेंगे, बाकी तो सबने कह दिया है, कि थोड़ा आप और थोड़ा सामने वाला अगर झुक जाएं तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि गलती तो दोनों की ही है। परवीन जी, आज मेरा फास्ट है तो जरा बिजी हूँ, इसीलिए सब कुछ शॉर्ट में बोल रही हूँ।
1: अच्छे खुदा भगवान आपका फास्ट कबूल करे। मंजुला विश्वकर्मा, आपने कहा है कि दोनों जरक जरक हट जाते, पर मैं सोच रही थी कि ऊंचे भजन लगा के जो पंडित साहब हैं वो कितना लाभ ले रहे होंगे, उनको कितना आनंद आ रहा होगा, और इन्होंने आके क्या कर दिया है, सारा खेल खराब कर दिया। लेकिन ही मस्ट हैव बीन एंजॉयिंग स्पिरिचुअली, होता है ना अपलिफ्टिंग ये इस। पर क्या अब ये भी है कि दूसरों को नहीं करना, ये नहीं करना, परेशान नहीं करना। पर थैंक यू मंजुला विश्वकर्मा, दिमाग में बैठ गई है वो। किसने कहा है? बलबीर कौर सबरवाल फ्रॉम एल्डोरेट। दिमाग में बैठ गया है वो या बैठ गई है, दिमाग दौड़ाना। जी, ओके। बलबीर कौर सबरवाल एल्डोरेट, सोनल मोदा, दिमाग का दही वो तो कर दे, दिमाग ठंडा रखना। जी बिल्कुल, बिंदु फ्रॉम जयपुर, दिमाग घुटने पर होना। हाँ, ये आपके आपसे ही मैंने पहले सुना था। हम कहते हैं कि इसकी अकल गिट्टों में, अब पता नहीं गिट्टे क्या है इन पंजा इन उर्दू, मतलब के एंकल्स में है उसकी अकल, इस तरह से कहते हैं। आप कहते हैं कि दिमाग घुटने में है। ओके, रितु गुप्ता।
2: परवीन जी, दिमाग के घोड़े चल दौड़ाना, दिमाग में भूसा भरा होना, दिमाग साथ में आसमान पर चढ़ना, दिमाग का मोटा, दिमाग में दही जमना, ऋतु।
1: हाँ, ये दिमाग का मोटा है, जिस्म का भी होगा मोटा और दिमाग का भी होगा, अक्सर ऐसा भी होता है। रितु थैंक यू। नीला शेत क्या कहती है?
3: हेलो परवीन जी, कैसे हो? देखो, आपने जो वो वॉल्यूम की बात की थी ना, वो तो हमेशा मॉडरेट रखना चाहिए कि किसी को डिस्टर्ब ना होए। मगर मंदिर में जो था उसके लिए मारपीट तो नहीं ही करनी चाहिए। मगर देखो, हम घर में भी एक रूम में से दूसरे रूम में किसी को डिस्टर्ब ना होए उसका ध्यान रखते हैं कि चलो लो वॉल्यूम पे परवीन जी को सुनो, या मॉडरेट वॉल्यूम पे। ऐसा इतना बड़ा नहीं रखना चाहिए कि घर में सभी, हम तो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, कि सभी को डिस्टर्ब होए, तो ये तो ध्यान में रखना ही चाहिए। और पहले आपको मैं आज एक बात बताती हूँ कि जब मैं अकेली थी, जब मेरे घर में खाली मेरे दो बेटे और मैं, मेरे हस्बैंड थे, तो वो लोग तो घर से जब चले जाते थे, तो मैं क्या करती थी, आपका प्रोग्राम सुनने के लिए घर के पूरे सभी रूम में मैंने स्पीकर रख दिए थे कि मैं जहां भी जाऊं आपको सुन सकूं। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है कि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, बच्चे भी है, बड़े भी है, सबको पसंद आए ना आए, तो मॉडरेट वॉल्यूम से करती हूँ। ऐसे ही भले मंदिर में भगवान का नाम ले रहे हो, कोई खराब नहीं है, मगर वॉल्यूम थोड़ा मॉडरेट रखना चाहिए। और मारपीट तो कभी भी नहीं करनी चाहिए, समझा के बता बच्चा के उसको बोलना, रिक्वेस्ट करना चाहिए, इसमें कोई मारपीट की तो बात ही नहीं है। और दूसरा, आपने जो अभी दिमाग का बोला है, सभी ने बोल ही दिया है, मेरे पास एक दो है तो मैं जो आपको बताती हूँ। हमारे गुजराती में ना दिमाग की कड़ी करना, मतलब कोई ज्यादा परेशान करते हो ना तो मेरे दिमाग की कड़ी मत कर, ऐसा बोलते हैं। और दिमाग को ठंडा रखो, बस ये दो है मेरे पास। थैंक यू सो मच नीला सेठ,
1: नीला, आपकी
3: बाय।
1: कितनी ब्यूटीफुल ये आपका मैसेज था, आपकी बातों में आप इंटरेस्टिंग बना

आते हैं, ऐसी बातें करते हैं जो इंसान सुनना चाहे. बहुत एक्सिलरेटिंग, बहुत ही प्यारा मैसेज. और वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि प्रोग्राम आप सुनते हैं, हर कमरे में स्पीकर लगा रखा है. अब आपने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता परवीन आदम हर स्पीकर पे लो हो गई है, आवाज़ आपने कर दी. नहीं, एक्चुअली आई कैन अंडरस्टैंड. हाँ, आप एक रूम में दो होंगे तो एक को अच्छा लगेगा जो आप सुन रहे हैं, दूसरे को अच्छा नहीं लगेगा. और इसको अगर आप हाई वॉल्यूम पे करेंगे तो फिर तो मुसीबत है, है ना. चलिए एक पहले ये सुनते हैं, वैजयंती माला पर जो फिल्म आया गया था.

0: दिमाग का दही नहीं बना, कितनी देर से हम दिमाग दिमाग कर रहे हैं। यूसुफ भट्ट भी मेरे ख्याल है कोशिश कर रहे थे कॉल मिलाने की, मिसेस पटेल भी शायद कुछ दिमाग पर ये कहना था, आप वापस मिला सकते हैं, अब फ्री हो गई है हमारी लाइन। और अब देखते हैं सलीम मेहर लंदन में हैं हमारे लिसनर।
1: Raveen ji, assalamu alaikum. Salim Meher from London. The older you get, the more you realize peace is priceless. Nature is medicine. Health is everything. And happiness is simple. Raveen ji, good morning to you and all your lovely Bemisar listeners. Raveen ji, also, can you dedicate the next song to the committee who organized the recent SAMC function at Muslim Club? Have a lovely day.
0: अच्छा सर अली, मुस्लिम क्लब ने रियूनियन रखी थी समिन ओल्ड प्लेयर्स की और ऑफिशियल्स की, तो वो कहते हैं ये गाना उनकी नज़र, ज़रूर ज़रूर वो भी कर देती हूँ। दिमाग पिघलाना सना का ना, इसका मतलब क्या है? दिमाग पिघलाना कि इसका दही बन जाना द सेम है, और दिमाग में भूसा भरा हुआ है। भूपी पटेल फ्रॉम किसूम, वाकई दिमाग में भूसा भरा होना क्या बात है, कमाल है।
2: हेलो प्री जी, दिमाग ते भूत सवार होना, किसे गल दा बहुत लगन लड़ना होना, दिमाग नु जंदरा वजना, अकल दा कम ना करना, दिमाग लड़ाना, चंगी तरह विचार करना, दिमाग विच कीड़ियां चलना, परेशान होना, दिमागी घोड़े दड़ाना, बेफायदा ही सोची जाना। थैंक यू जी।
0: मुझे लगता है जितेंद्र ने कहा दिमाग में कीड़ियां चलना, ये एंट्स, ये छोटे छोटे है ना कीड़े मकोड़े, वो दिमाग में चल रहे हैं। कितने अच्छे अच्छे हमारी लैंग्वेज में हैं ये डिस्क्रिप्शंस। ओके, गुजराती में भरत गंगाराम ने भेजा है, दिमाग ये चस्की जाओ है कि खिसकी जाओ है? मगज खिसकी जा, चस्की जाओ। ओके, भरत गंगाराम अपनी आवाज़ में मुझे बताएंगे ये क्या है, ये गलत है था कि ठीक। दिमाग ठंडा कम चंगा, बिल्कुल, अगर आपका दिमाग ठंडा होगा तो काम भी अच्छा होगा। मिसेस धंजल ने अपना काम कर लिया, लेकिन मैं एक गाने के बाद उनको सुनाऊंगी उनकी आवाज़।

0: मिसेस पटेल बहुत ब्रिलियंट है, बड़ी इंटेलिजेंट है. उन्होंने कहा है कि मैं खुद अपना बना लूंगी, मुझे ज़रूरत नहीं है आपको, आपके सब लिसनर्स ने दे दिए मुहावरे, मेरा तो एक ही मुहावरा है वो आप पर है. मैंने सोचा कोई तारीफ करेंगी. कहती हैं कि देखो मैंने तय कर लिया कि आपका दिमाग बहुत बड़ा हो गया. क्यों? मैंने कहा क्यों? कहने लगी जब मैं कॉल करती हूँ आप एक्सेप्ट नहीं करती, कितनी बार कॉल की है, ये दिमाग आपका ना शुक्र है खराब नहीं, कह दिया, कहा है बड़ा हो गया, सातवें आसमान पर है. मिसेस पटेल आप हुक्म करें हम आपके हर फरमाइश पूरी करते हैं. मिसेस पटेल और मिसेस धंजल.
1: हेलो प्रवीण जी, गुड मॉर्निंग, मिसेस धंजल हेयर. प्रवीण जी आओ दिमाग पे कुछ मुहावरे हो जाएं. नंबर एक, दिमाग आसमान पर चढ़ना मीन्स बहुत प्राउड होना. नंबर दो, दिमाग में खलल होना, दिमाग के अंदर कुछ प्रॉब्लम आई नहीं, दिमाग परेशान करना, दिमाग को खाली कर देना, दिमाग ना पाया जाना मीन्स इसका भी मीनिंग है प्राउड होना, दिमाग ना पाया जाना. लास्ट वन प्रवीण जी, दिमाग लड़ाना मीन्स अच्छी तरह सोचना. थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड डे.
0: हाँ, अच्छी तरह सोचें, दिमाग लड़ाएं और ठंडे दिमाग के साथ फैसला करें. मिसेस धंजल सो गुड. ओके, और मंजुला विश्वकर्मा ने जो लिखा है ना वो मैं ये ब्रेक ले लूं. उन्होंने एक तीन चार लाइंस में कोई स्टोरी बताई.
2: इट्स 12:18. On myjobsinkenya.com.
3: St. Lucy Kiriri Girls Secondary School is seeking to recruit a sales and marketing officer. Degree in marketing, business administration, communications, public relations or a related field. At least 3 years of experience in sales, marketing, business development or student recruitment, preferably within an educational institution or similar service environment is required. Visit myjobsinkenya.com to apply. Our client in the events industry is seeking to recruit a sales executive. Bachelor's degree in sales, marketing, business or related field, 2 to 5 years experience in sales, events industry preferred, with a proven track record of meeting or exceeding sales targets is required. Visit myjobsinkenya.com to apply.
2: Get your dream job today. Log on to myjobsinkenya.com. Kenya's most effective jobs website. My Jobs in Kenya is a free service and does not charge applicants for registration, applications or interviews.
4: Let's talk money on East FM with Apps. As Onesmas Masvi, head of premier banking at Absa Bank, talks about financial freedom.
5: Many people assume financial freedom means having more money. When it comes to Absa Premier Banking, we do understand that our customers have been able to achieve some sort of financial freedom, but they are yet to meet their goals, their dreams, and that is where we come in as Absa Premier Banking. We partner with you and we're able to help you achieve these dreams and these goals at a personal level, and you're able to meet those particular goals.
4: At Absa, we help you build, grow, and protect wealth through every stage of your journey. Download the Absa Bank Kenya app to open your Absa Premier account today. Absa, your story matters. TNCs apply. Absa Bank Kenya is regulated by the Central Bank of Kenya.
6: रेशम की डोरी, रेशम की डोरी, कहाँ जय हनिंदिया

0: और अब देखते हैं समिन दिमाग दिमाग बहुत हो गया है और जिस चाय में चीनी नहीं वो पानी है जिस बहस में दिमाग नहीं वो तो सिर्फ जुबान कीड़ा कांडी है जबानी कीड़ा कांडी है ओके हैज कम फ्रॉम ये एआई के दिमाग से कल्पना ने लिया है पर ठीक है आपने कहा कि जिस चाय में चीनी नहीं वो पानी है और जिस बहस में दिमाग नहीं वो तो सिर्फ जुबानी कीड़ा काड़ी है बहुत खूब अब दिमाग पर जोर डालना सोनल आपने कहा है और यासर दिमाग की बत्ती गुल होना पहला है जो डिफरेंट है मीनिंग टू सडनली ब्लैंक आउट लूज फोकस और फेल टू अंडरस्टैंड अ सिंपल कॉन्सेप्ट दिमाग की बत्ती गुल होना वेल डन यासर दिस इज अनयूजुअल एंड देन यू हैव गिवन अस अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन कमाल है और मिसेस धंजल की बात एक गाना मैं ऐसा मैंने आपको सुनाना चाहती हूँ मोहम्मद रफ़ी साहब का अनयूजुअल है पहले एक बार मैंने सुना लिया था लेकिन इतना भी पॉपुलर नहीं था पर सुने तो सही
1: एक जाने

0: 1966 की ये फिल्म थी और कभी वही मैं कहती हूँ कभी किसी ने इसकी फरमाइश नहीं की, मैंने देखा तो मैंने सोचा चलिए हम एटलीस्ट एंजॉय तो करें। अब मिसेस धंजल।
1: हेलो प्रवीण जी, मिसेस धंजल है। प्रवीण जी आओ अपने कुछ विचार दूं, वो है गौतमा के बारे। गौतमा ने जो लिखा है कहते हैं कभी किसी से ईर्ष्या ना करो, क्रोध ना करो, वरना मन हमेशा अशांत रहेगा। जिस व्यक्ति का मन शांत है वह सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। फिर वो कहते हैं जिस इंसान का मन काम करते समय बोलते समय शांत रहता है वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और वो इंसान दुखों से मुक्त हो जाता है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड डे।
0: के मिसी धंजल ने बहुत अच्छा कहा है, कैसे आपने दुखों से अपने आप को मुक्त करना है, कमाल है, बहुत शुक्रिया। कहती शांत रहिएगा। और यासर, यासर कहते हैं कि एक और मैं आपको सुनाऊं, क्या है, उन्होंने कहा था दिमाग की बत्ती गुल हो जाना, अब कहते हैं दिमाग में सवालों का एक तूफान सा चल रहा है। दिमाग में सवालों का एक तूफान सा चल रहा है, सुकून ढूंढते ढूंढते ये जिस्म जल रहा है। बहुत अच्छे यासर, गुड वन देयर। तूफान चलना दिमाग में सवालों का तूफान। और चलते हैं अब लंदन सिड कप, दिनेश पोपट, दिमाग का दही कर दिया है। आई लव दिस सॉन्ग ऑफ रफी साहब, एक जानिब शम्मे महफिल। पहले आपने सुना हुआ था दिनेश पोपट? मैंने, मुझे नहीं पता कि सुना हुआ था, लेकिन मिल गया जब मैंने सुना, मुझे अच्छा लगा।
2: दिस इज ईस्ट FM, Kenya's premier Asian mix. Some events you attend, others you experience. This Mashujaa Day, step into a premium outdoor brunch experience unlike anything Nairobi has seen, featuring a musical legend, Neo. And it gets even better, because joining him are the sensational, most sought-out live musical group, Soul and the Gang. It will be a day where everything will blow your minds. From large HD arena-sized screens, crystal clear sound, electrifying display effects, to good foods, all your favorite drinks, great company worthy of your status, and again, Neo himself. On 20th October at Ulinzi Ground. Gold tickets, 15,000 shillings. Gold couples ticket for 20,000 shillings. And platinum tickets with VIP experience, 40,000 shillings. They are going fast. So visit ticketyetu.com to grab one. Neo. One night only. R&B brunch experience. A Fennin and Radio Africa Group production. Powered by Stanbic Bank.

0: 참
1: 어디여 참참
0: 무슨 노 참참
1: 와이와 참참
2: 와이와이 참참 와이와 참참
3: और समय अब आ रहा है 3 अक्टूबर का दिन शनिचरवार जी हाँ आपने जाना है एक बेहतरीन महफिल में जहां आपके अपने मकामी जो गायक हैं समय फनकार हैं वो स्टेज पर होंगे और ये हैं सवानी ब्रदर्स एक तो हैं मेहुल सवानी और दूसरे हैं शैलेश सवानी समझे इन्होंने एक इवेंट का इनकाद किया है सुहाना सफर जिसका नाम है 3 अक्टूबर बॉलीवुड के क्लासिक गाने समन जेम्स जो हैं उस जमाने के हमारे गोल्डन पीरियड के जेम्स जो हैं वो पेश किए जाएंगे और रूह परवर गजलें जो हैं समन स्पिरिचुअल ब्यूटीफुल सूफी गजलें दूसरी गजलें वो लेकर आ रहे हैं मेहुल अंसले सवानी अच्छा मौका है एक हंसी शाम बिताने का और ये हो भी रहा है जैन भवन के ऑडिटोरियम लोरेशो में जिसके बाद ऑफ कोर्स रिफ्रेशमेंट्स भी या जिससे पहले भी रिफ्रेशमेंट्स दी जाएंगी आपने एक काम करना है सुहाना सफर के लिए www.justbookaticket.com पर अपने टिकट्स रिजर्व करने हैं क्योंकि बहुत पॉपुलर हैं ये दोनों आर्टिस्ट और ये ना हो कि फिर आपको बाद में मायूसी हो टिकट्स बुक करवा लें नैरोबी के संगीत प्रेमी तैयार हो जाएं, दिलकश गजलें रोमानी धुनें दिल को छूने वाले सुरों की शाम के लिए मेहुल और शैलेश लेकर आ रहे हैं सुहाना सफर एक शानदार महफिल पुराने बॉलीवुड के यादगार नगमों के साथ 3 अक्टूबर शाम 6 बजे जैन भवन लोरेशो के ऑडिटोरियम में जाने माने साजिंदे मेहुल सवानी और शैलेश सवानी का साथ देंगे याद रहे 3 अक्टूबर सुहाना सफर और फौरन अपने टिकट्स बुक करें ऑनलाइन www.justbookaticket.com पर
4: The spicy spot on the Kenyan Premier Asian Mix.
5: The sale at Nairobi Sports House is now on. Thousands of items including sports equipment and clothing from brands like Adidas, Reebok, Puma, Speedo, and Stiga. Hurry to the sale at Nairobi Sports House while stocks last. Branches in Nairobi, Mombasa, and Nyali. Purchase online for countrywide delivery from NairobiSportsHouse.com. Something for everyone in the sale at Nairobi Sports House.
6: Kenya's premier Asian mix. East FM.

0: लिखा हुआ है गाना और आशा ऑफ कोर्स आशा को दिया बहुत अच्छा किया और दिनेश पोपट फ्रॉम सिडकप कहते हैं आई हैव हर्ड दिस सॉन्ग अबाउट 20 टाइम्स इन द लास्ट फ्यू मंथ्स हमारे लोकल रेडियो स्टेशन अच्छा ओके इंग्लैंड में राइट थैंक यू अब चलते हैं मिसेस धंजल
1: हेलो संजीन जी आओ दिमाग पे कुछ लाइन हुई है कहते हैं दिमाग पर जोर डालकर गिनते हो गलतियां मेरी दिमाग पर जोर डालकर गिनते हो गलतियां मेरी कभी दिल पर हाथ रखकर पूछना कि कसूर किसका था थैंक यू प्रवीण जी और एक दूसरा भी है डिप्रेशन इतना बड़ा है कि दिमाग की सारी नसें दर्द करने लगी हैं लेकिन मजाल है जो एक भी फटकर मेरा काम आसान कर दे थैंक यू वेरी मच
0: बहुत अच्छे कोई आसान नहीं करेगा मिसेस धंजल वेल डन
2: सलाम प्रवीण जी भाई साहब थे उन्होंने आधा किलो जलेबी खाई और बिना पैसे दिए जाने लगे दुकानदार ने कहा अरे ओ भाई साहब पैसे तो उन्होंने कहा भाई पैसे तो नहीं है दुकानदार ने उन्हें अच्छी तरह कूटा अच्छी कुटाई की उनकी अच्छी तरह और जब उन्होंने मारूर खा ली तो उठकर कपड़े झाड़ते हुए बोले भाई साहब इसी भाव में एक किलो और तोल दीजिए शुक्रिया प्रवीण जी थैंक यू
0: इसी भाव में एक और किलो तोल दीजिएगा क्या बात है चलिए समीर एक गाना पहले सुनते हैं फिर मैं आपसे इजाजत लूंगी

मिसेस पटेल कहती है जब मैं कहती थी कि ये फरमाइश मेरी पूरी करो आपने नहीं की, आज आपने मेरा दिल खुश कर दिया। फिल्म नगमा का ये गाना था और नादिरा इसमें है दिलीप कुमार के साथ। बहुत शुक्रिया आपका मिसेस पटेल। और शबीर अहमद फ्रॉम लंदन, आपने बहुत इंजॉय किया इस समय, मुझे चलना है। आगे आ रही हैं नीलूफर फ्रॉम रेट्रो टू राइट नाउ, इनका प्रोग्राम समाप्त कीजिएगा।

0: retro to right now on East FM, Kenya's premier Asian mix.
1: Hello, hello. Aur kya hal chal hai? We are in Tuesday already this week. And guess what? We are already towards the end of September. Oh my God, where has this year gone? 29 September. To agar aapka aaj birthday hai, happy birthday to you. Kal kitne sare birthday the, my God. It was Ranbir's birthday, Lata Mangeshkar's birthday, my nephew Yusuf's birthday, another friend of mine, Dilip, his birthday. And then of course, couple of more messages came in. Sonal, I think your husband's birthday as well. And then the Ritu, unke bhai ka birthday bhi tha. So, aaj bhi agar aapka फैमिली में किसी का बर्थडे है उनको वेरी वेरी हैप्पी हैप्पी बर्थडे. वैसे मेरी बहन का बर्थडे है आज शाइन का, सो विशिंग शाइन अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम मी एंड द टीम ऑफ ईस्ट एफएम. एंड आई हैव गॉट अलका याग्निक एंड उदित नारायण अप नेक्स्ट फ्रॉम हमराज. अ वंडरफुल मिक्स ऑफ म्यूजिक ऑन रेट्रो टू राइट नाउ राइट अप टिल 4 PM. ऑफ कोर्स नॉट फॉरगेटिंग दिस आवर इज ऑल्सो दिल से दिल की बातें ऑन दिल से कह दो. सो कीप इट ईस्ट एफएम, इट्स 15 मिनट्स पास्ट 1.

0: शुफा मुईजुमा ने अहद किया है कि कगियो और कुटुस में जिन शराब खानों में लिबास के बगैर नाचती डांसर्स को लाया जाता है इन अड्डों को बंद कर दिया जाएगा ऐसे मनोरंजन को काउंटी में आम नहीं करने देंगे आलमी खबरें पोप लियो ने फ्रेंच बिशप्स पे दबाव डाला है कि कैथोलिक चर्च में बच्चों के बलात्कार को जड़ से उखाड़ दें होली लेडी ऑफ लूर्द के मकाम पे आपने मुलाकात की बिशप से 2021 में एक जांच में कहा गया कि क्लर्जी और चर्च के आम मेंबरान ने 330,000 बच्चों को अपनी हवस का निशाना बनाया 70 साल ये काम चलता रहा ब्रिटिश होम सेक्रेटरी शबाना महमूद ने ऐलान किया है कि रेफ्यूजीज को यूके में आबाद करने की नई स्कीम तैयार है आलमी मांग पूरी करते हुए ब्रिटेन अपनी जिम्मेदारी निभाएगा शबाना का कहना है कि इस तरह छोटी कश्तियों में विदेशी यूके आने से गुरेज करेंगे कंजर्वेटिव के मुताबिक होम सेक्रेटरी असाइलम में अपने पुराने बयान से बचने की कोशिश कर रही हैं पेरिस अदालत ने 2014 एयर अल्जीरी के हवाई हादसे के लिए स्विफ्ट एयर को कसूरवार करार दिया है हवाई कंपनी पे 1,93,000 पाउंड का जुर्माना आयद किया गया है परवाज में 116 मुसाफिर जां बहक हुए थे जो वागाडुगु से अल्जीयर्स जा रही थी पहले स्पेनिश प्रोसिक्यूटर्स ने अपनी तहकीक रद्द कर दी थी मगर 12 साल बाद मरने वालों के परिवारों को इंसाफ दिया जाएगा और ईरान के हुक्मरान मुज्तबा खामेनेई ने खबरदार किया है कि अरेबियन सी से तमाम विदेशी फौजियों को निकाल दिया जाएगा वाशिंगटन ने ईरान की होर्मुज खोलने की शर्त को ठुकरा दिया ईरान के जनूबी समुंदर से गैर मुल्की फौज को हटाने में कामयाबी हुई है और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान हुकूमत पे हमलों का इल्ज़ाम लगाया है कि दहशतगर्द डॉलर्स कमाने के लिए पाकिस्तान की सरजमी को निशाना बना रहे हैं मुल्क को डीस्टेबलाइज यानी गैर मुस्तहकम करना मकसद है इनका ये थी आज की खबरें मैं हूं परवीन आदम
1: The vibe is still strong. The energy is still high. From retro magic to today's biggest hits. This is Retro to Right Now with Nilufar.
2: All right, this hour also I have some fun content for you on Bollywood and beyond. Also the quiz, spot the bakwas and some wonderful music. Let's get started with KK. That's Alvida coming up next.

0: Retro to Right Now with Nilufer on East FM, Kenya's premier Asian mix. All right, three statements. I think it's not that difficult today. The first statement, Mount Kilimanjaro is the highest mountain in Africa. True or false? Second one, the Great Fire of London happened in 1666. Is that true or bakwas? And the third one, the lungs help you breathe. Which one is true? Which one is bakwas?
1: East FM.
2: East FM. एक कहानी निधि दत्ता की जुबानी खोल रहा है फिर से कहानियों का पिटारा। कहानी कभी किसी मशहूर लेखक की, कभी किसी अनजानी सी दुनिया से निकली हुई, कभी दिल को छू लेने वाली और कभी सोचने पर मजबूर कर देने वाली, कभी हल्की फुल्की और कभी गहरी, मगर हर बार एक नई कहानी, एक नया किरदार और इंसान को देखने का एक नया नजरिया। तो सुनने के लिए ट्यून इन कीजिए हर सैटरडे शाम को 4 बजे। कहानियों की बस्ती फिर से बसने जा रही है, तो आइएगा जरूर।
3: There's a difference between making money and making money work for you. One pays the bills, the other builds possibilities. Possibilities like passive income, growing investments, greater financial freedom, and a future that's not dependent on just one source of income. That's why at ABSA, we help you build, grow, and protect wealth through every stage of your journey. Because every financial achievement should be the moment you ask, why stop there? Download the ABSA app to open an account today and discover how we can help you go further. ABSA, your story matters. TNCs apply. ABSA Bank Kenya is regulated by the Central Bank of Kenya.

That is Dilin Adan in the vocals of Ayushman Khurana playing for East FM Kenya's Promotion Mix. This is The Satellites with Vishal. And aaj ka jo bhari sawal hai, jo topic hai, is, technology. Do you think technology is bringing us closer or it is actually, dividing us and setting us apart? आजकल टेक्नोलॉजी के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे. बट आप मेरे को ये बताइए, इज़ टेक्नोलॉजी ब्रिंगिंग अस टुगेदर, क्लोजर टुगेदर, और इट्स ड्राइविंग अस फार फ्रॉम ईच अदर? क्या लगता है आपको? आई विल शेयर माई ओपिनियन विद यू एज वेल. सो फॉर नाउ, यू इन केस यू वॉन्ट टू शेयर योर ओपिनियन, यू कैन सेंड मी अ मैसेज ऑन 0701 106 106.

0: That's Blake for East FM, Kenya's Premier Asian Mix. This is The City Lights with Vishal. And it's time right now for the Mix Up Challenge. But before I go on, aap mere ko batao ke kya ho raha hai. Is technology driving us apart or it is bringing us together? So, maine ye topic pehle bhi humne discuss kiya hai. And ek cheez main zarur batana chahunga. That there was a time main ek restaurant mein gaya tha. And I was actually... One of my friends threw a party. So, humne kaha chalo chalte hain. And I went to the restaurant. And hum sab dost ikattha the. And we were having a good time talking to each other. Reminiscing our old memories. So, kuch log phone... kya kehte hain? Khana order karne se pehle they were on their phone. Char jane the. Everybody was just on their phone. Khana aaya. Phir bhi they are on their phone. Char jane jo ikattha... आए हैं रेस्टोरेंट में सिर्फ अपने फोन पे ही हैं. समवन इज स्क्रोलिंग सोशल मीडिया, समवन इज रिप्लाइंग टू मैसेज, समवन इज डूइंग चेकिंग देयर ईमेल, समवन इज जस्ट स्क्रोलिंग रील्स, समवन इज पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया. यार अगर इकट्ठे आए हो तो इकट्ठा बैठ के ठीक से खाना खाओ ना भाई. ऐसा क्या कि यू नो रेस्टोरेंट में गए एंड देन यू आर नॉट इवन टॉकिंग टू ईच अदर. सो आपका क्या ओपिनियन है? इज टेक्नोलॉजी ब्रिंगिंग अस टुगेदर और ड्राइविंग अस अपार्ट? एंड विद दैट थोड़ा सा चेंज है आज मिक्स अप चैलेंज में. आई एम गोना गिव यू अ मूवी एंड इंस्टेड ऑफ टू यू हैव टू नेम थ्री सॉन्ग्स ऑफ दैट मूवी. ठीक है, ध्यान से सुनिए, बहुत ही आसान है. आई एम श्योर यू विल बी एबल टू गेस इन सेकेंड्स. सो द मूवी इज जब तक है जान. जब तक है जान के तीन गाने. You can send me answers on 0701-106-106 or you can give me a call on 0711-046-106. This is The City Lights with Vishal.
1: This is East FM, Kenya's premier Asian mix.
2: Leo One Night Only R&B Brunch introduces the world musical sensation Sol and the Gang. Coming for the Neo One Night Only R&B Brunch event, happening 20th of October at Ulinzi Grounds. Buy your ticket for this once-in-a-lifetime event now. Visit ticketyetu.com. Brought to you by Fenon and Radio Africa Group, powered by Stanbic Bank.